0: वात्सल्य भरतपुर क्लिनिक, 24 कोठी भरतपुर, फर्टिलिटी होपलाइन 01-597-0611।
1: Synergy FM 91.6 MHz.

0: संस्कार र संस्कृति के हो भन्ने त सबले बिर्सिसके आजकल। आफ्नो त यही यति कार्पेट नै हो।
1: विगत 35 वर्षदेखिको सुमधुर साथ यति कार्पेट किन्दा कार्पेटको पछाडि यतिको लोगो हेर्न नबिर्सिनु होला। यति कार्पेट, कार्पेटको शहनशाह।
2: राम्रो र भरपर्दो इन्टरनेट र टिभी चाहियो, ViaNet र Via TVको साथले पाइयो। हजुर, अब पावर अप योर परफॉर्मेंस विद द बेस्ट वैल्यू इंटरनेट एंड टीवी सर्विस इन टाउन। 200 Mbps स्मूथ एंड फास्ट अल्ट्रा 5 पाउंड होस मात्र रु 999 मा र 175 प्लस चैनल सहित को फीचर फुल वाया टीवी मात्र रु 150 मा। इंटरनेट ओन्ली र टीवी सहित को अन्य पैक पनि उपलब्ध छ। अल्ट्रा 5, अल्ट्रा परफॉर्मेंस, अल्ट्रा वैल्यू।

0: 96.6 MHz चितवनको आवाज।
1: वेलकम टु सुपर ट्राभल्स, सॉरी वी आर क्लोज्ड, प्लीज कॉल बिटवीन 9 AM टु 6 PM, थैंक यू।

0: तुझे देखकर किसी की याद आती है। किसकी पता नहीं, किसकी बस याद आती है। मजहर को क्यों मारा?
1: मजहर को शांताराम ने मारा।
0: और शांताराम को क्यों मारा?
1: तुझ तक पहुंचना था।
0: अगर मैं तुझे मार दूं अभी यहां तो
1: मुंबई नहीं ले पाएगा।
0: मुंबई के तेरे जेब में पड़ी है।
1: मेरी मोजड़ी में।

कुछ भी पहले ही दे दू वार्निंग, पार्टी चलेगी टिल सिक्स इन द मॉर्निंग, जी भर के नाच ले बेबी नाच नाच के, तोड़ दे सैंडल आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार।

0: तिन महिना जति समय दिनु न।
1: तिन महिना कुरो नगर है भुइनन्द्र।
2: अहिले 11 बजेको छ।
3: टाइम चेक का साथमा केक भनेकै काठमाडौं बेकरी अ फ्रेश बेकरी इन टाउन साथै
4: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस।